0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले का

0: भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
0: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
5: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

0: और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने NEET UG पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Chandigarh, heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह्युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है। यह स्मारक कम

0: का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं से ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
3: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान

0: शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज की फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा,

राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी है आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
1: चंचल जी और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं, पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
0: देखिए आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने।
1: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
0: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है। लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर,
1: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
0: हाँ,
1: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
0: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई इचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
1: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है हर एक को होता है।
0: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात। लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
1: वो बताए अपना। हाँ, बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
0: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की में राही बाई सोमा पोपरे, जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती है, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
1: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए के गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी

0: उनको क्या चाहिए, चाय
1: चाय चाहिए,
0: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहां एक पांचवी चीजें होती है, वो चाय
0: चाय होती है।
1: दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले ही बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्किया जो है वो अपना आलम मान देती है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में
0: बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
0: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई थी।
0: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
0: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपरे की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कुंभाल्य की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंबले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुन पण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपरे जो है वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताते हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चेट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर

0: विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अतिरिक्त पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देशी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के बाद लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए,
1: मिल जाए ना, तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। हाँ। ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की जो चाय पीने की आदत है ना,
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने भी चाय नहीं पिलाई चाय बस चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहां चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में रिसेंट जोड़े तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
1: सच में बहुत ज्यादा।
0: और पुरानी कथाएं है ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन हाउ ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना,
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं। चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए, तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानी, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े सब बाहर निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं सदी

0: सुगंधों से, बहुत तरह तरह के स्वाद से और भिन्न भिन्न सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेलजोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: भाई हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय का कितना तोहफा हो जाएगा.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में, साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों होगा आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का आदर.

0: ये तो हम कहेंगे
1: चाय की बात और भारत की बात ना ऐसे कहते
0: हैं। इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
1: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया। तो ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
1: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया की जो अन्य देशों में होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर,
0: स्वादिष्ट मिलती है,
1: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
1: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो जाए।
0: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज
1: की, अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा न वा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर जिंजर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी।
0: जी
1: बहुत

0: दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं भाई। चाय तो चाय है, और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है।
1: चाय की पहले भी करवा लिए
0: जाते हैं। कप चाय मिल जाने पे
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: क्या बात है भाई,
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है।
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमें छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षोता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने, आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय

0: जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेजरी लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती है। हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती है। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरे चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं?
1: होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारी फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है, और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से, तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती है कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया की, मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा तो ये क्यों ऐसा हो रखा है, तो उसे उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती। और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही है
2: बिल्कुल जाना है
1: शुरू होने वाला है और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मी में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़े। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल। और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तोड़ा कुरिया काई हंका केलल बादू
4: वन गादे दे हंगाई तो।
5: ओ मल्ली, ये नवे इवत्तिन समाचारा?
3: इदु निमगु गोत्तु, अदु नमगु गोत्तु।
4: नाई दिले, गादे घमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श

0: प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंटेशन।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पत्तन पोत परिवहन

0: और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताह तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरुरे को हिरासत

0: हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन वुडमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
2: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
1: Highlighting the role of MSMEs in strengthening global supply chains, Mr. Goyal said that the government has initiated